दर्शक जराई गीतुल माथुप स्टैंडोल करने अज्जर सनजच नजे आकाशवाणी लेने जुन जितान कस्ता आजे दिरिंगी में डिग्री गुन स्कोर गुन सनजत इन्ना डिग्री तंग पे ना दर्शक छु चौथर दन तंस कर माजी प्रीका तत्पा ना जुन डिग्री संचेस लपुलिन इना गे थुस्तन टपा तंग ठोपा गिंदुल लंगेस ने जल दन नरगिस खातुन तंग अमीना खातुन फुलकाने नाते शरीफ तंग पुंचो आंचुक तंग ठोपा ने फुलकाने छोसलु संचेस लपुलिन अतोचुचो त्रियाधिका आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात यार्ग्या तंस्कर्म चौंका मॉर्निंग न्यूज सनाजत चुचो त्रिया तंग फेदिका सेवंग नूरबू तंग ठोपाने सलकाने जुंगलूर एक संचेस लपुलिन यांग लदा सना नसुल सुचो त्रिकुई का सनाजत अतोचुचो त्रिगु तंग स्कर्मर्ष्ट्री का टाशी डोलकर तंग यांग चंडोल में सलकाने लुरिक सनाजत फेलेमे लुगु ने डिग्रिम छुचो दुर्गु तंग फेदिका संचेस लफुलिन नतो छुचो तुर्चुनी नेमे छुचो चुकनी सुपा आकाशवाणी दिल्ली ने एफएम गोल्ड दिल्ली डिग्रिम गुन सनाजात नेमे छुचो चुकनी सिका फेलेमे लुरिक संचेस लफुलिन छुचो चुकनी तंग फेदिका एनसीईआरटी चिंतक जत कने डिग्रिम उमंग खक चिक्सतों सुमग्या चुकशिकपा संचेस लफुलिन आकाशवाणी दिल्ली ने निमे छुचो चिकिका हिंदी नगा नसुल चिकतंग स्कर्माशिका अंग्रेजी नगा नसुल सनाजत मगमी ख्योक्तो ने फे डिग्री में नगा निमे छुचो चिकतंग स्कर्माशुनी चिकतंग स्कर्मा ngapchu chukpa फिल्म लुरिक संचेस लफुलिन आकाशवाणी दिल्ली ने निमे छुचो चिकतंग स्कर्मा ngapchu का उर्दी नगा नसुल निसिका मिड डे न्यूज तंग छुचो निस्तंग स्कर्मा चौका दोपहर समाचार सनाजत निमे छुचुत निस्तंग फेदिका स्नला छिरिंगांग दुसे सलकने जुंगलु यहाँ तेज तिंग ने छिरिंगांग मोतंग सेवा डोल में सलकने जुंगलु रिंग संचेस लफुलिन यहाँ छुचुत निस्तंग स्कर्मा ngapchu ngaika लदाख सेनांगा नसुल सनाजात डिग्री मिस्पिना फिदो छुचुत श्नेका लदाख सेनांगा नसुल सनाजात छुचुत श्नातंग स्कर्मा श्नेका चिरिंगांग दुसे सलकाने लु तेस्तिंग ने स्तंदिन यांग रोल तंग ठोपा ने सलकाने लु रिगांग सनाजात फेलेमे लुगु ने डिग्रिम पिदो चुचो तुष्णा तंग फेदिका संचेस लापुलिन आकाश वानी दिल्ली ने पिदो चुचो तुगिका हिंदी नवा नसुल तंग टुक तंग स्कर्मश्ने का अंग्रेजी नवा नसुल सनाजात गम्यूल पेस कदलोन डिग्रिम पिदो चुचो टुक तंग स्कर्मश्ची का संचेस लापुलिन डिग्रिम को डिग जत कन सोना मांगचुक मगमी के उक्तों ने फे डिग्रिम में नवा टुक तंग स्कर्मजीब चे का फेलेमे लुरिक सनाजात यहाँ लदाख सेना नस्तुल तंग डेल छत अर्दुन तंग स्कर्मा चौंका पिदो चुचुत अर्दुन तंग फेदिका तुंडु बांग मो तंग श्रिंग डोल का निस्तल का निलुरी सना जदिन आकाशवाणी श्रीनगर ने चुचुत अर्दुन तंग स्कर्मा जिप्ची का उर्दिना नस्तुल तंग डेल छत सना जत दिरिंग सानी चुचुत क्या दिका पुमो ने डिग्रिम पोमे जिक्सन संचेस लफुलिन डिग्रिम को डिग जत कन श्रिंग चोरल सानी चुचुत रिया तंग फेदिका गुलजार अहमद तंग ठोपा ने फुल कने बलती गजल निक सनाजत छुचो त्रिया तंग जिपचु जा अनिर्गु तंग फे चुक पा आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार संध्या न्यूज 8:09 या उर्दिन आनस सुल सनाजत या दिरिंग सानी छुचो त्रिगु तंग फेदिका सोनम स्पल जिस तंग रुप डोल मिसल कने जुंग लुरिक संचस लपुलिन गाजा यूनियन पिन गजे दिरिंग निमे डिग्रिम गुने स्कोर गुन ngaji akashwani lene junjiktan nga to chu tudun tang skarma ship chu song to kasata tatpa nang jin digrim sanchez la phulin ngan la ge thupsan tapa tang thopa gindun hangyas ne jaldun sanajat

0: में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाई गई 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
5: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
6: सोनाघाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
7: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
8: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित

दर्शन जना इंटर शेड्यूल करे सलका नील हुरिक सने जा सिंह जी आकाश वानी लेनी चुन जिकताइन कसता छुचो छुचुक पर फिल्म हुरिक संचस लो फुलिन

दासें जराएं, लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार ने सिलसिला फिल्म लूसन अजत्स कसता एक दूजे के लिए फिल्म लुबो लता मंगेशकर तंग एसपी बाल सुब्रमण्यम ने संचसला पुलिन ये लूस चमकन आनंद बख्शी आंगलियां स्टिकन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

दासें जराएं, लता मंगेशकर, तम किशोर कुमार ने कभी कभी फिल्म लू सना चाच कसता फिल्म लू ने डिग्री में स्तिंग जुक पिका धर्मात्मा फिल्म लू मुकेश तंग कंचन ने संचस लफुलिन इलू चमकन इन दीवार यहाँ लुहा स्टिकन कल्याण जी आनंद जी।

0: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said, a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है,

0: नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre at Shyamaprasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations and anti-submarine warfare. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. In West Bengal, anticipation is high as the BJP government prepares to present its first full-fledged budget today in the Assembly. For Chief Minister Suvendu Adhikari, this marks the first major test of promises made during the election campaign, with the centre pledging massive financial support and the advantage of a double-engine government, expectations among citizens are soaring. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will undertake an official visit to Mongolia and South Korea beginning today. External Affairs Ministry said that Dr. S. Jaishankar will visit Mongolia and meet Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart B. Batsetseg. The External Affairs Minister will visit South Korea on 24th and 25th of this month. During the visit, the minister will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Testing Agency will commence the UGC NET June 2026 examination from today. The national level eligibility test will be conducted in computer-based test mode until 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET exam is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship, Assistant Professor positions and admission to PhD courses. US Vice President J.D. Vance has said that talks with Iran were making progress as senior delegations met in Switzerland to address Tehran's nuclear program and regional security issues. Speaking to reporters before the meeting, Vance said negotiations have already yielded encouraging results. The talks are focused primarily on Iran's nuclear program, though regional security issues, including efforts to maintain the ceasefire between Israel and Lebanon, are also expected to feature prominently. In men's hockey, India defeated Netherlands 3-2 in their last match of AFIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de Espriella has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing senator Iván Cepeda by a very small margin. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार अबेलार्डो डे ला एस्प्रियला की जीत। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर के गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीतने के साथ संपन्न। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से और ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्तसेत सिंह के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूसन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वैंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। जेडी वैंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है। उन्होंने वामपंथी सीनेटर इवान सेपादा को मामूली अंतर से हरा दिया। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार डे ला एस्प्रियला को लगभग 49.7% वोट मिले जबकि सेपेदा को करीब 48.7% मत प्राप्त हुए। वकील और व्यवसायी एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला ने चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध पर सख्ती से कार्रवाई का वादा किया था। उन्होंने अमरीका के साथ घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने की भी बात कही थी। उनकी जीत को अर्जेंटीना और चिली के कई दक्षिणपंथी नेताओं ने स्वागत योग्य बताया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव परिणाम का स्वागत किया है। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में अपना भारी बहुमत बरकरार रखा है। चुनाव परिणाम कल घोषित किए गए। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। नई संसद के अक्टूबर में सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। असहमति पर दमनकारी कार्रवाई के कारण चुनावों में बाधा उत्पन्न हुई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
5: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड्स को

0: ओलंपिक्स विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिर्फ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज करते हुए विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागा और इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप जी में पहले स्थान पर आ गया। इससे पहले केप वर्दे ने फ्लोरिडा में ग्रुप एच के मैच में उरुग्वे को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। ईरान और बेल्जियम के बीच भी कल रात कैलिफोर्निया में ग्रुप जी का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। 66वें मिनट में नाथन नगोए को मेहदी तारेमी पर फाउल करने के लिए रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद बेल्जियम के 10 खिलाड़ी रह गए, लेकिन ईरान इसका फायदा नहीं उठा सका। इससे पहले स्पेन ने अटलांटा में ग्रुप एच के मैच में सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार जीत के साथ अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। स्पेन के अब 2 मैचों में 4 अंक हैं, जबकि सऊदी अरब 1 अंक पर बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किया। भारतीय टीम के स्टैंड इन कप्तान हार्दिक सिंह को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की वापसी हुई है। दौरे पर शुभमन गिल कप्तान और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। बोर्ड ने रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया है। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर के गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीतने के साथ ही संपन्न हो गया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में

0: अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में

0: हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसिग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
0: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrah at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुड्डू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते।
2: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
3: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खूब ही आनंद का बात है। बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
2: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
3: किताब एक ड्रामा का है ये, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बाद भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। हम बहुत खुश है।
2: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
3: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था 8वां सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ, ये संताली भाषा अष्टम तपसील में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी। ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों मिलके बड़ो सक्सेसफुल ये मिला है।
2: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
3: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा। लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
2: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
3: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा। लेकिन बांग्ला हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा संताली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहां जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है। आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था। ये लड़का तो वो अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हम सिर्फ क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है, किताब में हम पढ़ा भी है। क्या करता था जब लिखता था आंसर पेपर, जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर के पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आगे हम लोग जाओ, पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है, कैसा ही है, तो बोलता ना बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया, लिख के गया, लिख के गया, ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एक इंस्पिरेशन मिल गया।
2: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
3: प्राइमरी गांव में ही है, नुआड़ा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहां से पास आउट होके अंकलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ग्रेजुएशन किया है।
2: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
3: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में, अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया हम। चार साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ तीन चार नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है ये के लिए, हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर्ड किया है। लास्ट में रिटायर्ड किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
2: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
3: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है, दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
2: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
3: अभी तो रिटायर कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक के साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी के साथ तालमेल के हम काम करके जाएगा, जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा। कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है। इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, कितना संभव होगा मालूम नहीं।
2: टूडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
3: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सा निग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेके के बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
2: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लेकिन हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसा भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटालिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। हर आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
2: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
3: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था, वीर बिरसा। तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा सारजोंदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य एकेडमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
2: टुडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
3: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, ए नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेगा, यही अच्छा वाला बात है। हम तो ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, ये अच्छा होता है।
2: टुडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टुडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
3: नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

अरे जनाब, छुट्टियां लेके तो देखिए, क्योंकि छुट्टियों में हम जो चाहे वो बन सकते हैं। स्वागत है आपका तस्वीर में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और यहाँ है कश्मीर की वादियों में भक्ति का सजा उजियारा है, माता खीर भवानी के द्वार उमड़ा श्रद्धा का धारा है, उसी के बारे में हम बताएंगे आपको।

बात अगर कश्मीर की हो तो ये कहा जा सकता है। खीर भवानी मेला, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, आज यानी कि 22 जून 2026 को ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले के तुलमुला स्थित माता रागन्या देवी मंदिर में कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव है खीर भवानी मेला। जम्मू कश्मीर में आपने अगर देखा है तो फिर आपको याद आ गई होगी, नहीं देखा तो हम बताएंगे आपको। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और तस्वीर में आज हम आपको बताएंगे खीर भवानी मेला के बारे में, और ये कश्मीर है।

और इसी कश्मीर में आप हैं तस्वीर देख रहे खीर भवानी की। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा और पवित्र वार्षिक धार्मिक उत्सव है। और यहाँ पे ना आपको पता है ये गांधरबल जिले के तुलमुला गांव में माता रागन्या देवी को समर्पित मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी को आयोजित किया जाता है। वो पर्व है आज ही अभी। इस मौके पर भक्त माता को खीर और दूध का प्रसाद चढ़ाते हैं, इसीलिए इसका नाम खीर भवानी है। और ये मंदिर श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर जगह पे है। नेचुरल वहाँ पे झरना है और माता रागन्या देवी को कश्मीरी हिंदुओं की कुलदेवी भी माना जाता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है तस्वीर, वही तस्वीर जिसका इंतजार आप सब करते हैं। छुट्टियों में हमने कहा आपको कि आप जो चाहे बन सकते हैं, बस छुट्टी तो लीजिए पहले आप कम से कम।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान।

आप हैं तस्वीर में, और तस्वीर है ये आज श्रीनगर के पास। लगभग 22 मिनट आपको लगेंगे अगर आप टैक्सी या गाड़ी से वहां जाना चाहते हैं तो, बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें तो वसंत ऋतु में मंदिर में जो वहां का पवित्र कुंड है उसमें खीर का भोग चढ़ाया जाता है, इसी वजह से खीर भवानी के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। और जैसा कि हर बार हम आपको कहते हैं कि हर जगह की कोई ना कोई एक कहानी होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कहानी कौन सी है, जा करके उसको हम देखें तो सही। ये पवित्र मंदिर मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के तुलमुला गांव में है। सड़क मार्ग द्वारा आप जाना चाहते हैं, वो रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत, जब श्रीनगर से आप जाएंगे, क्योंकि बहुत पास है, लगभग मतलब वही 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पे, तो आपको पूरा का पूरा रास्ता बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आप जम्मू सरकार की जो बसें हैं, मेले के दौरान सरकार जम्मू और दूसरे शहरों की जो विशेष बसों की व्यवस्था भी करती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इस बार तो आपका ये इवेंट चला गया, लेकिन अगली बार के लिए आप अभी से प्लान बना सकते हैं। हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहां से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पास का बड़ा रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी, और यहां से इसकी दूरी है लगभग 300 किलोमीटर की। लेकिन कैसे भी जाइए, पूरे रास्ते खूबसूरती, ऐसा लगेगा बाहें फैलाए हुए आपका स्वागत कर रही है और यही कह रही है आइए।

लेकिन हम यहाँ पे आपको कहेंगे तारीफ कीजिए, क्योंकि तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आज है तस्वीर, हमने आपको बताया। आप प्लान कीजिए अगली बार जाने का, और थोड़ा सा प्लान करके जाएंगे तो उसके आसपास की जो चीजें हैं, जगह हैं, वो भी बड़े आराम से आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर पढ़ के जाएंगे तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक जुड़ाव है जो हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको पहले से अगर हम जान लेते हैं तो थोड़ी सी रिपीट फिर से हमें याद हो जाती हैं। तो फिर आपको आज की तस्वीर में खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा और पवित्र वार्षिक धार्मिक उत्सव है, उसके बारे में हमने बताया। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अब इसको अगली बार देख के आइएगा और उसके बाद फिर आप हमें बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिल में बस गई, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रही। जैसे कि जब आप यहाँ जाएंगे तो उस कुंड को देखेंगे तो आपको एक अलग तरह का, जिसको कहते हैं ना कि सम्मान जगेगा। मंदिर के परिसर में ये स्थित है जलकुंड, जिसका रंग समय समय पे बदलता रहता है और उसकी अलग अलग कहानी भी है।

अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कश्मीर। अब बजने वाले हैं 12, समय हो रहा है समाचारों का। फिर से मिलने का करते हैं वादा। ओके, टाटा।

कसता इस तिंग ने कहो ना प्यार है फिल्म लो उदित नारायण ता आल कैग्निक ने सनजत लुटसुमकन सावन कुमार तक यंग लुयांग श्रीकन राजेश रोशन।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

0: ये सीन होएगा ये तो मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी होएगा ये नहीं मालूम था। देखो देखो कैसे अपना नाम उसके दिल पर लिख रहा है। देखो
1: दिल पर थोड़ी लिख रहा है, हाथ पर लिख रहा है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।

और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है।

इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग,
4: उमंग। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना

0: झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrived in Mongolia today for an official 2-day visit. In a social media post, Dr. Jayashankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivpur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting, a report.
2: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS Joint Working Groups on Counter-Terrorism and on Security in the Use of Information and Communication Technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi, and a firing-cum-robbery case in Chandauli district.

जय हिंद फौजी भाइयों। इस मनपसंद कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म गीत, तो आइए इस कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है हार्टलेस फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार है अराफत महमूद और संगीतकार है गौरव डगुनकर।

अगला गीत सुनते हैं जय हो फिल्म से अरमान मलिक और साथियों के आवाज़ों में। गीतकार है शबीर अहमद और संगीतकार है अमल मलिक।

चलिए अब सुनते हैं अरमान मलिक और नीति मोहन को हिट स्टोरी 3 फिल्म से गीत। गीतकार है रश्मि विराग और संगीतकार है अमल मलिक।

अभी आप सुन रहे थे दिल तो बच्चा है जी फिल्म से मोहित चौहान को, गीतकार थे नीलेश मिश्रा और संगीतकार थे प्रीतम। फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं बोल बच्चन फिल्म से मोहित चौहान को। समीर के लिखित गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

प्रेम रतन धन पायो फिल्म से गीत सुनते हैं शान की आवाज़ में। गीतकार है इरशाद कमील और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में आइए आप सुनते हैं मोहित चौहान और साथियों की आवाज़ों में रॉकस्टार फिल्म से। गीतकार और संगीतकार है AR रहमान।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। ख्वातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इकतसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। रियासती सरकार के मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 20% का इजाफा किया गया है। रियासत के वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले बजट में ये ऐलान किया। इस तरह मजमुई महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार समाजी बहबूद की सभी मौजूदा स्कीमें जारी रखेगी। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया कि रियासती सरकार के स्कूलों और सरकार की इमदाद से चलने वाले स्कूलों में लड़कियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जनाब स्वपन दास गुप्ता ने असेंबली में यह ऐलान भी किया कि सरकार मुख्तलिफ खाली ओहदों के लिए 1,00,000 अफराद की भर्ती करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि रियासती सरकार खातून उम्मीदवारों के लिए 33% खाली ओहदे रिजर्व करेगी। रियासत के वजीर खजाना ने MLA के मकामी एरिया तरक्याती फंड को 70,00,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 1,00,00,000 रुपये करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स में 20,000 सीटों पर तकरूरी की जाएगी। शुमाली बंगाल में एम्स अस्पताल और कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादलाए ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई नौयत पर भी गौर खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेरे गौर आया था। दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत जिंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल को सराहा और कहा कि मकामी बिरादरियों की सरगर्म शमूलियत चीतों को महफूज रखने के प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रही है। इससे कबल सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क में एक सफारी पर गई और चीतों की बहाली के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका एहलकारों ने सदर जमहूरिया को बताया कि सरदस भारत में 52 चीते हैं और उनमें से 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं। 3 चीतों को जंगली जानवरों की गांधी सागर पनाहगाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीते का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते वहां लाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर दो मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मंगोलिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और मंगोलिया के दरमियान खसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने की खातिर मुफीद तबादला ख्याल और बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इस दौरे में वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को दो दिन के दौरे पर जनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ तबादला ख्याल करेंगे और जुमेरात को जेजू के मकाम पर अमन खुशहाली से मुतालिक जेजू फोरम में कलीदी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर मारूफ जरई साइंसदान और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता सरदारा सिंह जोहल से आज लुधियाना में मुलाकात की और पंजाब के जरई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद जनाब नबीन ने कहा कि एक ऐसी शख्सियत से बातचीत उनके लिए बायस इफ्तिखार है जिसने ज़राअत के शोबे में गैर मामूली ताउन किया। उन्होंने कहा कि जनाब सरदारा सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें ज़रई मामलात पर अहम मालूमात हासिल हुई और उन्हें एतमाद है कि उनके नज़रियात और मशवरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: इत्तेहाद और नशरियात और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर मम्लुकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के दो रोजा दौरे के तहत भोपाल पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन आज शाम भोपाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो रियासती गेस्ट हाउस की जानिब रवाना होंगे, जहां वो भोपाल जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल वो देवास जिले के कनोड तहसील के दोकाकुई गांव जाएंगे, जहां वो एम्पीलैड स्कीम के तहत मंजूरशुदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। उमूर खारजा से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चार दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया है। इसका मकसद किलीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नवानिगार ने बताया है कि ये कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज आसाम और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने जेली हिमालयी मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा और शिमाल मशरक के हिस्सों में कहीं कहीं कल तक शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को एक के मुकाबले 3 गोल से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साहले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरफहरिस्त आ गई है। इससे कबल आज फ्लोरिडा में ग्रुप एच के एक मैच में केप वर्ड और यूरुगे का मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इक्तसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. In a major employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026-27, focusing on social welfare, infrastructure development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, has announced the recruitment for 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. We have a detailed report from our Kolkata correspondent.
4: The government proposed a 20% hike in dearness allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. Pensioners will also benefit from this increase, which will take effect from 1st October. Presenting a deficit budget of 6,070 crore, Finance Minister Swapan Dasgupta called it a roadmap for building a developed Bengal. He also revealed that the state's debt now stands at over 8 lakh crore rupees, making financial discipline a major challenge. The budget includes recruitment for 1 lakh vacant posts, 20,000 in the police force and 50,000 teachers. 33% of these jobs will be reserved for women, with an additional 10% reserved for Agniveers. Key allocations include rupees 36,000 crore for the Annapurna Yojana, over rupees 8,500 crore for agriculture, rupees 8,000 crore for food and supplies, rupees 7,000 crore for higher education, and nearly rupees 18,000 crore for home and hill affairs. The government also announced salary hikes for para teachers, civic volunteers, and village police. Anganwadi and ASHA workers will receive an additional Rs. 5,000 monthly honorarium, while midday meal cooks will get Rs. 1,000.

0: strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

0: सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और

0: मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Medium wave kilohertz chikstong apchungaksum myangna meters band nipkya gechukebji tang shuzurgu yang fm megahertz gyanang chik tang shuzur chigika ngaji akashwani leni junjik tangin ngime chusod nis na pe chaduk kasta chusod nis tang skarmang apchunga chukpa lurik sanajat sngol latsri angdu se salkani ilubo sanajat

0: ibo akashwani len kasatangi jarangai phunchok chhosgal nas nasul sanazat shidlon narinda modis kolkata nanga naval shibi pe chosti utkans nakak sumi commission ne guzuk jate no is kap shidlon nas gega res gunor tang thapchu se thakchat po meritami nanga khudi shuk se thokne chono gen gega res ibe talik chon jigote inok moto shidlon nas gega shumskyo blaskha khinanga chalak nyu khan gel khap chigman pa jigstin nanga chungsa jig gur chukches inok molan jig izuk mala jaat
1: अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
0: Zamling steel than a yogi jack, Shamarzong, a Kalatsi DC offices, Ganskorina, Shamarzong, Yerzonspon, Kunzes, Ami Ujuks in Arcia, Zatinok, Digrimbo, Guzuika, Yule, Gelu, Lenches, Tangyampo, Guzuk, Sonstenok, E. Digrimir, Joji, Yoga for Health, Aging, Borte, Yoti, Enok, Digriminanga, Kaktuskan, Gunesung, Shasala, Zadinje, Yoga, Zachespo, Miji, Samstang, Luce, Hamde, Pia, Kakchan, Inkaniskola, Shada, Zatinok, Inna Tsogla, Digrimiskap, Yoga Instructor, Echone, Yogi, Jungdar Salad Zati Enok degree mena Kalatir Zong Spon SDM Chostang Shidi Ushkong Tester Zong Elaskun Sources Ponbo Loptu Kuntang Mimas Mangpojik Tusadat Enok Inna Tsokzla Yogi Jag Bhartiya Janata Party Hoy Headquarter Rika State President Tashi Galchan Khachui Ujuk Senar Tsiyazat Enok Iskaps Kuzhap Tashi Galchan Khachui Jalzom Shkyoti Yotkan Gulna Sungsha Salazad Enjik Luse Khamde Tang Semste Jide Toga Yoga Tsamji Khachan Inte Sko La Shet Salazat Enok Khongres Shilo Narinda Mudi Uti Dinanga Yoga Bo Gyagares Zamling Gangpe Pias Kuske Jigi Tsula Pulti Enok Yang Shilo Nes Mi Jigi Mitse Nang Yoga Bo Jaktung Zachis से शंस्कुल जाते योते नुकमल तोक कसतांगी जानांगे खेप्टाक्षीक सानाजात दूरदर्शन केंद्र ले नस्तुलेस देखा गई पिया हरजोंग संगमा ले कारगिल नुब्रा चंगतांग शाम दरास्तांग जंगस्कार गुने स्टिंगर ए फिया न्यंजूस लेंचस इनोक रेल्तोस पागुन टीवी नस्तुल कवेच नांगा थोंगम स्चन वीडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी स्टालचन नस्तुल छोंचे तंग तंगचे से थोगा थोंगम चन राना इलागा एचडी 4K वीडियो कैमरा 4G 5G कनेक्टिविटी चने स्मार्टफोन तंग रंग इलागा मोटर खोलो योतन गुल नास नास क्या ते सालचे जिनोक जुरो रेल्तोस पर गुन नेस न्यंजुस गुन राना इर्जोंग नेस कांगोस ते नोक न्यंजुस फुलचे से स्टिंग जुगे थेस्टांग जुलाई देश से चुरुक बढ़ते योते नोक जिप्सल

दूरदर्शन केंद्र ले नस्तुल ले देखा ने थुग्युस जात नियन चसिनो मिशन शक्ति नंगलो गा DHEW तंग OSC लस्कुंग गोनेस जुनेल दे छ चुबदु नेंग शुचुक बा जर्जी रिंग्स ला नेराक सुल छुंग स्क्युम पट्टा योगमास क्युम पट्टा कुंगमा लिंगशेत फोटोक्सर माचु हनुपट्टा हिंजु उर्सी सुमदो छुन तंग फंजिला गमिल गुनिना हगोस्पेल छ से डिग्रीम जिक टलिक जाते नो ई डिग्रीम टलिक जा छ से मिक्जी बोर्स चोजुंगे पोमो तंग ठुगु यारगेस लोनखुंग से छोग ने स्पेल ते योतकन छजी सोसो गुन गुते पोमो गुन तंग लोपटुक गुलना रोग्राम सल नि योतकन गुन स्कोला हगोस्पेल छ स्पो इनो दिरिंग नेपाला ग्यालसा न्यू दिल्ली नंगा जाकनी से ब्रिक्स ग्यालखप गुने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गुने छोक पा छोक्सेस इनोक ई छोक्सचेन बो ग्यागारे टल्डिक जादेन जिनोक यंग इन नंगा ग्यागारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ले उठी दिना जाचे सिनोक छोक्सपेस कप साइबर सिक्योरिटी डिजिटल गुते जिक्सपा योत्खान तंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुते स्कला जोत्खान थेस्ते जन तोन छन मंगपुजी का टोजदुर जाचे सिनोक आकाशवाणी लेना स्थान सुल्थन।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौज भाइयों। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं तमाशा फिल्म का गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। इरशाद कमील के लिखे इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

अभी आप सुन रहे थे चलते चलते फिल्म के गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। लीजिए अब सुनिए चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

फिल्म में गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए कॉकटेल फिल्म का गीत मोहन कनन और शिल्पा राय के आवाज़ों में। इरशाद कबीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभी आप कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे देवदहली फिल्म का गीत अनुष्का मनचंदा और शेखर रवजैनी की आवाज़ों में। इस गीत के साथ आज का ही कार्यक्रम समाप्त होते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: आरबीआई कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: TLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं TLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।

0: chen cha che se ka ka ne jix na bo ma yo te o nen che se kes ma ma po le te ne te nang yam po yam po यो बंचे ठुआ मंपो तुस मंपो फेने ना चिकना तेने रारोश्य से फ्याल नुम्स्ते उच्छा मित क्या हल्लते उसम पसंद ठुने रंग ना नाश्ते ना खप तंका ने केस माने मंपो लेप तेने यू नंग डेल ते दिन बार अंगतां समा माने जिक्षे से नस्तां शिक्ते उच्छार ले कने ठु समाला जुमो चिकना ची कने खपो शेर जोस पसंद जार ते हेपेटाइटिस सी के सम माने मंपो सुन हल्ला ले कसा ले तो नस्तां स्पो तक्सा दिन बार अंगतां समा जुम ते छगला जात गोश्य से दिन बे जिक्स नंग मतलब उस दो माह छः मौजी तो तेने ते फिर अक्सर नस्तांस पर जुक्षी को
1: पिया कैसा जो नस्लुक्स माने गा ताश क्यों मरा अंगले तेने तेने रंग कम से लास्ट जेट पाजे चुरला तेने कजुक्षी नस्लुक्स यो ते उन्हें रंग बोरा जाते अंगले ताँ यंपो यंपो तेने गा ताश चित्र शी ट्रांसपोर्ट यूज़ चुक जस्ला पुलिस से खाक पंग मांगा ताँ खाक चांजी यों तो अंगले शिकत पा तेने गा ताँ नार्कोटिक्स सेल डिस्ट्रिक्ट ले गयो ते अंगले तेने कजुक्षी पुलिस से चोक ने गा ताँ इन्ना ड्रग्स कुन या राज जिसे से चालक्स कुन गोकथाप सिंडो जुमचे सिंडो या ई मिना चाम शिंग Me, Jess, the youth, Kunkan, Yangatai, Tsunkan only. That's how Mangatai, Stitsok Spinangatai, me, Des Mishuk, Jessitsok, transport that just like Nishikazuki last year, Dulin Yotin.
2: Casamam, Satan, drugs, more than the doctor Jotolatale. Starting at the thing, those are dust the following in Ayale. Normal drugs, low intensity drugs, you can use much
1: as
2: Jess Ganjas and Yale. Two low chicata, Tiktak Dulkale.
1: Casam,
2: लो सुमजी हाल लगा था ना अब वो चेंज हुआ लगा था ना साइकोलॉजी से जो ना सेंटेंट जैसे ना कोकीन लगा था कोकीन चिक्स लगा था ना हीरोइन जैसे वो ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जैसे अब उसके इश्यू क्या है क्योंकि गुनाह 2010 ना फल लगा था ना 2020 सब बात अपन चुनके ये गांजा और ये चेस लाया था वो क्वान्टिटी ठीक ठाक आता था कैसा वाले तो सोमपते ना मापा उस पर लेंगे ना फिर पुलिस कहता है हर को जो इन्फोर्समेंट का है ठीक ठाक था सुन क्या गया मतलब जूम से ना बताया ठीक ठाक गया तरीबन कुछ 26 मतलब 26 किलो की ना था किलो चार जूम से ना गया चलो लगा किलो चुक सुम सिंह था गांजा सुन क्या तब तो क्योंकि लोग 2020 साल लगा था मैं 11 मंग छत गया अब तेज चीज के उन्होंने देखा कि मतलब अर्थात पहले पुलिस ज़्यादा जूम पहले अब उन्होंने मोटर्स ऑपरेटिंग जो होता है मोड ऑफ चीज चीज की भाई ये तो मतलब यहाँ मुक्त हाल था मतलब चेंज हो उन्होंने फिर क्या किया कोकेन करना था कोकेन जरिए चीज हीरोइन वो चीज किया वो क्या इशू चीज समझ तो क्यों को माला मन है अभी वो किलो के हिसाब से नहीं आ रहा है दसा तो होता है ग्राम हिसाब से होता है दो एक ग्राम दो ग्राम ठीक है मतलब मंपन क्यों ना चार ग्राम ले जैसा मंपन क्यों गया बोले अब प्रॉब्लम चीज जैसा कहता है पुलिस कहता है सिनेरियो होता ना ले लास्ट थ्री ईयर कहता है लॉस में ना होता ना ले टोटल कहता है इनको कहता है 47 चीज एफ आई आर होता है 47 एफ आई आर इनको नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक एक्ट में लगने वाले तीन हुआ टोटल 77 कहता है मिल है जूम से नुकसान आया उसमें पकड़ा हुआ तो उनके खिलाफ डीपीएस कहता है चालान चुस लगे अब तक संगत हलता ना कि दही सिंह ना हल लगाता ना जनवरी फरवरी वाले जो हमारे एस एस पी साहब होंगे हमने पहले रिव्यू चुस में डाले क्योंकि हल लगाता पुलिस ने काम किया लेकिन इफेक्टिव छह मुख्य जगह डाले मतलब मतलब कहीं लैगिंग कर रहे सो बाद फिर उन्होंने पूरे थोड़ी सर्च करके हमने फिर किया जी पेनिट्रेशन होता है खासकर जहाँ आता है पेरेंट्स का खासकर क्योंकि डॉक्टर तो अपना काम चोर गए पुलिस वाला भी आता है लाश उन्होंने फिर आता है कम्युनिटी भी अपने हिसाब से लेवल का लाश होता है एक चीज़ रहता है इग्नोर ले पेरेंट्स बताते
1: हमारे
2: वाले हमारे को बिल्कुल मतलब टोटली बच्चा इग्नोर हो गया तो वो फोकस करके अभी दस आता है लाइंग पे नाम कम से कम हमने 30 अवेयरनेस गेम्स ले प्रॉपर ले टाउन नुबरा और न्यू मामले कवर किया है
1: कैसा जो ताशां स्कूल ले डिग्री में गुंजा था ना उन ले डॉक्टर लेता अंगता ये तो जरूपा ते नेते विकाने अंगता मी गुन नंग या जुंगे कजुक्षिक अंगता चिरका जिक डुला डो या ते समाचिक ना गैप बो मिलु शेष या ते बे नंगता बारगियां जिक लुसा नो बारगियां बो मेट कांचो चिसला शां स्कूल ले खाक पे नंगे ला कजुक्षिक जिक्स ते नेता अंगता अंगता लादाक से फामा मिसाल जस्ते चिमी कौन ला ये ड्रग्स इसको ला चम्मची खागो यंग दुग इवे कने दें बार ठोगु जिक गाता माउस पे गाता यूल जंग कने नो कौन कोक्स्टोंग चाचे से नो जरकन बुक अक्षी खागो यंग दुग
0: कसले दें बार अंग गुमांग ऐ चम्मे इसको ला शांस कुल्चे से प्याशेस गे डिग्रीम चम्मा गोजुक चौस जने मने दें बार अंग मान नसुक्ष को मोती प्या दुपिले फामा इंची गेरगान इंची का उन हला ठुआ मने गाता एक अच्छा नाई नो पहला कौन मने जंग कांग गिस हमे रुपिले गाते वो मने सल्पो इतु रगले स्कूल जिया कोने अक्षी हेडमास्टर सर जिंगा बोदा दरपिन की इकंगाय ठोने लाचितो सिथो पाजन जिन ते जने ठोन लखटा स्प्रे ताचिन ठोन मिन मिन माने मिंग शदगु दुपिन हला लेते जन ड्रग्स ते नने गेरगन चिकचिक गिस मिरुले ठोने चीस कोला जस्तेन हला ले ते न यम पों यम पो तेने चोला डिग्री मंग पो चाचिन ते न गाय ते हा गोले फामा उन ल माने स्कूल चंकं माने कजुक सिथो ते त माने थगरे स्प्रे तो मन चीस कोला स्प्रे ता सन कजुक सिन जते ओ माने शिस गाय अमर पिन हला ले तेने ते न गोमा चेजना शायद मी उनलाते सुनते ते दुगले कि यो

0: ngata tu cham sikol chen ka tu sika yu kol na dik zete te o ngata nangmi changme phya au sik khala ngata na thim chi chuk yang chang tang ta zuk sik te o zat kushes ma khak
1: time
0: table chuk sik ka sale ta jise ngata phone khorai na digital well being zete ngata au sik setting ji ka le te na ngata set chuna ri anoki acha instagram ganta phet minute ni shuman kol mi an te kan khoram khoram ban cha chi chuk ka khala le te chuk sang ngata ngan la fix chus tang na te nang thu ne ka ne rewa chu sang ngan lang phama on khoram one e azuk po ka ngata ina ngata plan rule beka dulches zat sa na te umal de mu cha chis khala le cha te nispa bo yu thun la ngan ne phala salpo zat chis ki acha ngira azuk silche se pya kolat na iza yu kol na dik te ni e side changwa e spend na mane thu chun sang me mane zix yo do mane thu lo mane chu ang manun kan sang me instagram ka reel tang ses ses ta injina mina mina kal te ung khala de usum pa sang ngatang sama gyu se no le ka ne risk mina mina changya no te fya supervise met ba thu chun mula ta बिल्कुल अब हमें मजिक सम मिसाल जस तेरे गाता है उसकी रूल स्ट्रिक्ट चिक चुचेस की घंटा इज चिक माने कॉल में गोस सर कन बहुत लाले अकाउंटेबिलिटी यूं चुचेस ठुके सच्चेस लेके ये इज चीप या कॉल पिन है जते ते वो टीम्स वो सल्पो जिक जात ना दिमाग अंगता जिक्स ना मुका अंगता फोन गुते यूं था लेते कने गाता शिको ज्ञान चेस तुक ले
1: कसा जो तादाक सा इन्ना तुस पो गाता जुर्पो जिक्स ते गाता यंग चिगया ले यू लो खची कुने ना दाक संगत इंस्टाग्राम से जोस गाता ते जोस या फेसबुक ठुगुलो चुरुक सुपमान गाता बेन गाता ngata tang duk te so se ngata teams kun gyar gun na man ngata gostom duk ngle ta shamim le ta te ne ngata ngi I chuk se teams gal drugs nang delte ngle ya drugs ngata chongka ni ru ya kavena dak sang ta mang che jun jun gun duk zanok ba khong ngata drugs ne ne nang je zoom ste yo do teams se chapa ole teams se thokni ka zu ka zu ngata ibena chapa ri yo te no ka bu ngata ka bu kyute den ba te ne ngata yang mouse pani ngak drugs conscious ko nongle even a teams nang tene chappa ka juk shiyo na tena chappa nang thitik danda ve ka lada police drill te no manogle
2: gasam na sangi ina jua so la motor property ni jota police na koile motor property koi bhi criminal chata yo nale wo cheez plus jo na ko apne tarike ka ta yale team ko chun system chun gale
1: kasa
2: ngi ngi hal mush na ki 2010 na 20 na you know mang chappa ta ganja jit khon quantity na koile kilo na sumji ha dasum so
1: kasa ngi
2: time pe मोटर जुम्बली चेंज चेंज होने का सा ग्राम मिला था साले ग्राम में नंबर एनडीपीएस एक्टिव नंबर का था पनिशमेंट था तरीका सुम क्या गले
1: आता
2: स्मॉल क्वांटिटीज इन चीज क्या था गले मीडियम क्वांटिटी और कमर्शियल याले स्मॉल क्वांटिटी नंबर था एक ग्राम दो ग्राम दस कोकीन आता है यूरिन जुम्बल याले वो तो बेलेबल है मतलब कोर्ट उसको बेल कर देता है तो अब यू क्या हो गया जो मतलब ड्रग पेडल को ये पॉइंट मिल गया लेकिन आता स्मॉल क्वांटिटी खेलना
1: बेल
2: कोर्ट को भी बेल करना है तो पुलिस तो पकड़ देता है जुम्स खेलने वाले अब तब मीडियम साइज ना था मीडियम क्वांटिटी होने लगे उसमें आपको 10 साल तक परमिशन किया गया था कमर्शियल तो ना तो बेल बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था कमर्शियल बिल्कुल क्योंकि हाल लगा था चार से ना था कमर्शियल क्वांटिटी आ गया था ले उसके बाद क्या सुना था टोटली बेल कोर्ट जम हो गया कमर्शियल में बिल्कुल बेल नहीं है लाइफ इंप्रेसमेंट क्या लोग पूरे मीचे इंसान मीचे खाने को जेल था जाए मीडियम पर 10 ईयर्स तक लोग छू सब किया गया दस क्रिमिनल क्या करता है स्मॉल क्वांटिटी लाता है ताकि जूम ना करते बेल्थ पहले ये मोटर्स ऑपरेटी यूज़ करता है अब पुलिस क्या कर सकते लगता है लासन को तो मीची कहता लंच खोस ले एफ आई आर तंस ले निस्पा बेल हो गया तीसरा चौथे के बाद फॉर्म उसको पीएसए कर सकता है पीएसए जो ना था एक साल वन ईयर बिल्कुल डिटेंस भी हो वो हम करते हैं लसा कैसे
1: ता ये जे पुलिस से तुम लाता ता पुचा इंशिक पोमो इंशिक ते ने ता ता छुपो ये लो जान छमा लेप चोक पाले ता ई ड्रग्स ता ये पोस्टन ते ये जे का कजुक शी केस ले बना ते वेना कजुक शी जिक्स ने रा ता मिक्सल चोस ते ना ता लिर जों जालता सल्ला ना phama nang thugi na del bonga ta te bena chai nga ta thakring yot kan jiksa ya tene thun la dang de ranga ta te ozano stress ya tene anxiety nga ta semba nang tatpa nang del te zumo mang pot kan te sok jiksa ya kazok shigira nga jiks ngi je ta I gun ngi je nang ko ke shig le banang pot te kes bonga ta study cho cho pa le ke se nang ko ngi je jiksa nang po mang che gun san burang chi yo te nang le
2: mang che to main majority ya la ta thun ga aba ma matlab alag chakne la parents le
1: bekan
2: bekan yo to ya fit na diga तो लोग कुछ जंग जंग था नॉलेज डूट वो तो ठूं मांग चाहते हैं मतलब 70-80% तो ना दूं ठूं भी जाने ले क्योंकि अब हम अलग सों अबले खरंग कहीं हो के कहीं और चीजें पसंद चुस पाले अमल यात्रियों पर ठूस जूम पीने को या मेले का दुगिया या जाल या बोध चुस पाले टोटल इग्नोर समेल है मेन 70-80% के स्टेन दुगना ताले पेरेंट्स की वजह से कैसा
1: कैसा जो कैसा
0: तेरे ये डिग्री में जुतेंगे यंग लोन जिक जून समारा ले गान ला इस उस ला केस मांग पुले बच्चे ना तेरे यंग आया हॉस्पिटल ला वार्ड जो अवेलेबिलिटी होता है लिमिटेड होती है तो उस संपसंग नत पा मांग पुंगा ग्यारह लांग रेफर चोगो साथ में हल तक संग ये लोन बुजुन समारा तक सा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है डी एडिक्शन सेंटर ले खोरा पेस थे हल यू तक समाने इन्ना बुद्ध का निर्दांगी सुमना फुली फंक्शनल होते ना बेड रिग्ञात युत हल तेने ना इना नतपा ठू सुजी की अगुत नंग एडमिट चुस्ते बोरानु हल दा चिक दांगी तगोजम का जुक छुते हिसाब से तेने यू मने चंग रिन मेत पाले छुन ला बोरा का दुन तंग नंग ची छमा का सला नुक तेने पूरा टाइम टेबल जाते हो क्या तेने नंग काउंसलिंग नंग यंपो यंपो जो एक्सपर्ट्स के मस्ते कोना मोटिवेट चो चेज या कोन इंस्पायर चो ला ताए टॉक्स तंग चेज नंग फिजिकल एक्टिविटी नंग ते छमा जा दिन जना थल ले तक्सा तेने ई अजुक पो मतलब तरुंग इन नंग ताए गोजदो में नाजिन कोने तरुंग ई समा बेड्स बो मा चोचे से अजुआ प्लान आ चार्ज आ दुक लेक कसा तो तेने ते फियांगे ते जुवान फामाजिक सुजी समतना या थु खोनो गुन कल तस कोने ते समतना की उगेल राखला ई संग एडी एडिक्शन जिना एडमिट सोतेगा दमो चोस्ते ठीक छाइन रा समतना तेने नाम इन नस्को न दिख तेनो लेक कसा अलादा खार्ट फाउंडेशन ने बिल्डिंग इन आयो तेनो ले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एडी एडिक्शन
1: कसा कसा থাপে না সুলজে না ইয়াসমে না সুলজে না মানে হামি গো চেসি রাখবাংলাই নাঙাতা ডি এডিকশন সেন্টার জি মিরুক ই চকসে নাতবিং নাঙাতা কালা সারু জারখানা পেন বা দাকসা ডি এডিকশন সেন্টার চকসুন লেবানাং পদেম বা তাঙাতা ইভে কানিস কালা সঙ্গে ইয় সারকান গুনলা তেন ইভে নাঙাতা ফিংচে থাপলাম্বো ডিগ্রিম বেনা থুসা যাস থুকি ছেজিন জিলিং ইসকালা জিলে।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

नक्सेंग जंगे गुलदार हेमा तंगठ पर गुने साल कनी बल्टी हो जल दिखता नथस ना चे आकाशवाणी लेने चो थाने चो तो ग्यात तंग स्कर्म जिप चुई जंगा छरू का सदा आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार संध्या न्यूज़ एट 9 यंतेस्तिंग ने उर्दिना ना सुरकुन साना जात।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दसगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की।

0: उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सरतेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इजराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।